0: त छैन यार।
1: शहर में भीड़ सब मान्छे अकेला, टेंशन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोई जिंदगी से धकेला, सानो बात मा ठूलो समेला।

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps international net TV साथ में dual band router, Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set-top box. मात्र रूप 12 से प्रति महीना में. शर्तें लागू होने चाहिए. छिटो बनेगा ये Willingo.

को अवसर मा क्रम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सिलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आइरन को खरीद मा एक्साइटिंग अफर पाउनु होस् हरेक 15 दिन मा क्रम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लकी ड्रामा आइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका पनि नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज EMI मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलाङ, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
2: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13